0: is without borders. We go there.
1: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst. Reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
2: Ah, the kitchen, the heart of the home, where memories are made and celebrated. Our go-to place for those freshly stacked pancakes early in the morning or for that late-night snack munchies. We are in there together, cooking, eating and celebrating life together. Let's keep the kitchen a place that is shared by everyone, where we build stronger bonds and grow together. Sunfoil, Now We Cooking. Visit nowwecooking.co.za for recipes that everyone can help make.
3: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
4: London, Dubai, Istanbul, Makkah, wherever you go, take Vivier with you. A foreign currency account from Old Baraka Bank lets you spend in six international currencies using one secure card. Swipe overseas, shop online, withdraw abroad, and enjoy zero fees on point-of-sale transactions. Safe and secure. Activate your Vivier foreign currency account today at welcome.oldbaraka.
5: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media, humanitarian journalism.
6: Gee, welcome back, program. A good mid-morning talk with Maryam Hashmi, live from Johannesburg. Salam Media. Ji haan, aapko khush aamadeed kehte hain. Aur hamare saath hamari fourth guest maujood hain, jinke baare mein main aapko batana chahun. That guest is very important and very close to my heart because she is my colleague. And unka experience bahut zyada hai. Aur Pakistan ke different channels pe unhone kaam kiya, broadcast journalist hain. Aur unka journalism style jo hai, wo hame bahut pasand hai. Aur हम जो है उस स्टाइल के दीवाने, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आज हमारी जो है हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इस प्रोग्राम को उर्दू में करने का मकसद हमारा यही है कि हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपनी जुबान को भी प्रमोट कर सकें. तो हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से, आइए उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नीलम.
7: वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप और आपके तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको भी सलाम.
6: वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया नीलम, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. उम्मीद है आज की डिस्कशन जो है वो सबको बहुत पसंद आएगी. और लंदन का वेदर कैसा है? वैसे तो मैं सबसे पूछती हूँ आप क्या लेती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो विंटर है और बड़ा अच्छा अब तो वेदर स्टार्ट हो रहा है, समर की तरफ हम जा रहे हैं. तो आप सुनाइए कि लंदन के वेदर की कोई हाल अहवाल बताइए जरा हमें.
7: ये तो आपने जो है ना वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो दुख है लंदन के रहने वालों का, इंग्लैंड के रहने वालों का, उसके ऊपर बात शुरू कर दी है. तीन हीट वेव्स इस बार हम देख चुके हैं जो कि बड़ी एक्सट्रीम हीट वेव थी और लंदन में इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. मई, जून, जुलाई, अगस्त वो सब में हीट वेव रही है और अभी भी थंडर स्टॉर्म्स की जो वार्निंग है वो दी गई है, लेकिन उससे भी बजाय के फायदा और नुकसान ही होना, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई वेदर रहा, बहुत ज्यादा हॉट वेदर रहा है और आने वाले सालों में इंग्लैंड के लोगों को बड़ा इसके लिए लाइफ सीरियस किस्म की लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी. अगर मौसम का हवाला आप जानना चाहती हैं तो वो इस वक्त अच्छा नहीं. अभी आजकल थोड़ी सी गर्मी कम है लेकिन हमें बताया जा रहा है मेट ऑफिस की जानिब से कि एक और हीट वेव है जिसका अभी सामना करना है हमें.
6: चलिए आपको स्ट्रांग बना रहे हैं वेदर की कंडीशंस जो है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में, लंदन के बारे में यही मशहूर था, यही फेमस है कि बहुत ठंड होती है वहाँ और जब ये स्टार्ट होती है तो जाती बड़ी मुश्किल से. चलिए इस विंटर को और हम विंटर को इंजॉय करें, आप इस समर को इंजॉय करें और बड़ा अच्छा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो है. अच्छा नीलम, बात करते हैं आज के टॉपिक की. बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है. बात मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिया कि हम लंदन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है. आप क्या समझती हैं सबसे पहले कि इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है और फिर इसके रिस्क जो हैं वो क्या हैं और कैसे जो है इस पे अटैक्स को जो है रोका जा सकता है, उस पर भी हम बाद में बात करें, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं?
7: सही. अच्छा मरियम, इस्लामोफोबिया जब हम कहते हैं ना कि ये बढ़ रहा है तो आई थिंक हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. ये हमेशा से था, ये हमेशा से है. चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, चूंकि अब वेबसाइट्स हैं, न्यूज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो रिपोर्ट हो जाते हैं इंसिडेंट. क्या आप बताएं जो 70s और 80s में यहाँ पे इमिग्रेंट फैमिलीज थी, आप सिर्फ अगर पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लें, वो आपको हॉरिफिक स्टोरीज नहीं बताती कि जब वो इस मुल्क में पहली बार आए थे क्या क्या उनको सहना पड़ा था. हलाल गोश्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, मस्जिद नहीं थी, किस तरह से जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको किस तरह से जो दूसरे बच्चों की जानिब से बुलिंग का सामना करना पड़ता था उनके रिलीजन की वजह से. तो ये सारे इंसिडेंट्स इवेंट्स हमेशा से रहे हैं. अब लोगों में अवेयरनेस ये आई है कि वो रिपोर्ट करते हैं. मैं आपको टेल मामा की ही अगर जो स्टैट्स हैं वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो टेल मामा हमारे जो देखने वाले उनको भी हम ये बताएंगे सुनने वालों को कि वो सारे जो इस्लामोफोबिक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है पुलिस को बताते हैं, लेकिन ये भी जो इदारा है ये तमाम इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करता है. उसकी जो स्टैट्स है फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ 2026 यू विल बी सरप्राइज टू नो के 131 इंसिडेंट्स हुए हैं एंटी मुस्लिम हेट के, हेट स्पीच के, इस्लामोफोबिक इवेंट्स कह सकते हैं. खवातीन को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, राह चलते, बसेस में, ट्रेन्स में, आपकी वर्क प्लेसेस पे हूटिंग की जा रही है, पार्किंग स्पॉट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स में. और ये 2023 में ओवरऑल 1000 जो इवेंट्स थे वो रिपोर्ट हुए थे और यहाँ 2026 में सिर्फ 131 इंसिडेंट्स फर्स्ट सिक्स मंथ्स में रिपोर्ट हुए. लेकिन ये वो है, ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये हमेशा से था लेकिन अब लोगों में कम अज़ कम ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर आप मुझे मेरे रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट करोगे तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा.
6: सही, आपने जैसे बात किया सोशल मीडिया की, आप क्या समझती हैं ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बढ़ाया है या इसको कम करने में इसका थोड़ा किरदार है?
7: अच्छा सोशल मीडिया ने एक तरफ तो इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत है और हमारे बदामी मुख्तलिफ क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, मुख्तलिफ रिलीजन और एथनिसिटीज के लोग यहाँ पर हैं, वो इसको कंडेम भी करते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है. पुलिस और हुकूमत भी ऐसे कानून लाने की कोशिश करती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए. लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जब टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो फिगर्स हैं या रिफॉर्म यूके की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उनकी अगर आप रैलीज देखें, वो यूनाइट द किंगडम मार्च हुआ था आपको यकीनन याद होगा मई में, किस तरह से वहां पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी मुस्लिम हेट को के जज्बात को भड़काती है. तो वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से एक एक्शन होता है तो फिर मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वहां से भी एक रिएक्शन आता है. तो सोशल मीडिया एक पूरे एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बना रहा है. पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाले जो नेबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम है वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं. कम्युनिटीज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था. अब चूंकि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट होता था, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग न्यूज सुनते हैं, नहीं सुनते. अब सोशल मीडिया, फोन तो आपके हाथ में है ना,
6: बिल्कुल
7: मुझे फोन पे तो नजर आ ही जाएगा. मैं ना भी देखना चाहूँ तो एल्गोरिदम या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या कहीं ना कहीं वो न्यूज मेरे सामने आ जाएगी और वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है. तो सोशल मीडिया का ये किरदार है बढ़ाने में नहीं लेकिन हर चीज को दिखाने में और उसको मल्टीप्लाई करने में सोशल मीडिया का किरदार जरूर है.
6: सही है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं. आप इसके बारे में क्या कहेंगी, क्या एडवाइस देंगी कि इसको किस पॉजिटिव वे में यूज करें सोशल मीडिया को?
7: आई थिंक मरियम, सबसे पहले तो मैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, और मुस्लिम ही नहीं मैं ये कहूंगी कि नॉन मुस्लिम भी हैं, अगर हिंदूज हैं, सिख हैं, इवन वाइट एथनिसिटी के जो लोग हैं, किसी को भी, किसी भी इंसान को उसके रिलीजन या उसकी रेस या एथनिसिटी की बुनियाद पर कभी भी किसी भी किस्म के तासुब का सामना नहीं करना चाहिए. इस हवाले से स्कूल्स में जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पे कभी कभी हम होता है कि साल में एक दिन मना लिया, जी हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मना लिया, या किसी और रिलीजन या एथनिसिटी के खिलाफ अगर कोई नफरत या तासुब उसके खिलाफ, नहीं, इसको साल में एक दिन के लिए महदूद ना करें. एक कॉन्स्टेंटली स्कूलिंग और अवेयरनेस, और बार बार बार बार लोगों को बताया जाए कि इट इज नॉट राइट कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसके रिलीजन की वजह से. बार बार इस हवाले से एड्स यूज किए जा सकते हैं, प्रमोट किया जा सकता है ऐसी कैंपेन्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जा सकता है, पब्लिक फिगर्स को यूज किया जाता है. अगर वो एक शैम्पू या एक परफ्यूम की बॉटल बेचने के लिए उस पैगाम को घर घर पहुंचा देते हैं, तो ये अच्छा पैगाम ही पहुंचाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको देखें कि किस तरह से ज्यादा लोगों तक इसकी इस पैगाम को पहुंचाया जा सकता है.
6: आपने बहुत खूबसूरत बात की है नीलम, कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीजें इकदामात होने चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की है, कि इन्फ्लुएंसर्स भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है, कि अगर कहीं ना कहीं हमारे पीछे या यू नो बैक साइड पे हमारी कहीं सोच है अनकॉन्शियसली कि ये है इस्लामोफोबिया, और बहुत सारे लोग जो वहां पहले मूव किए थे और अब उनको जिन चैलेंजेस का सामना है वो पिछले से कहीं या तो ज्यादा है या पीछे से बहुत कम है. जैसे आपने बात किया कि हलाल फूड बहुत कम अवेलेबल होता था, लेकिन माशाल्लाह अब वहाँ हर जगह स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है. अच्छा, यंग बच्चे जो है, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, उन्हें तो पता भी नहीं है इन सारी चीज़ों का, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है. आप क्या समझती हैं उसकी क्या मेन वजह है इस डिस्क्रिमिनेशन की? क्या वहां का सिस्टम है, एजुकेशन है, या वहां पे आप फैमिलीज को इसमें इन्वॉल्व समझती हैं?
7: आई थिंक कोई भी टीचर्स तो ये बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप किसी को उसके कलर की वजह से बुली करें या उसके रिलीजन की वजह से, उसके फेथ की वजह से. ये घरों की ही तरबियत होती है जो स्कूल्स तक आ जाती है, और चाहे स्कूल जितनी भी पॉलिसीज बना लें या सख्ती कर लें, कहीं ना कहीं बच्चों की जो अपब्रिंगिंग घर में हो रही है, जो सोच उनके जहन में डाली जा रही है, वो एक दूसरे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको किसी ना किसी बात पे वो बुली कर देते हैं. और बच्चे जो इस एज में होते हैं, अक्सर यही होता है कि अगर ये बुलिंग नहीं कर रहे होंगे, वो किसी के कलर की वजह से कर रहे होंगे, किसी के बोलने के अंदाज की वजह से बुलिंग कर रहे होंगे, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है ये स्कूलों में. हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से ही कुछ बच्चे, अगर उनको सही उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, तो वो बाकी बच्चों के लिए किस किस तरह से ट्रॉमा का बायस बनते हैं. तो आई थिंक अगर ऐसा कोई बच्चा सामने आता है, तो स्कूल्स को ये करना चाहिए कि वो उसको पॉइंट आउट करें, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स का जो है वो एहतमाम करें, उसके पेरेंट्स को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कि ऐसा रवैया एक डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे वो आप देख रहा है कि एक नेबरहुड में आपको मुस्लिम भी नजर आ रहा है, जियो फैमिली भी नजर आ रही है, आपको हिंदू भी, सिख भी, उस डाइवर्स कंट्री में वो 7 साल का, वो 11 साल का, वो 15 साल का बच्चा ऐसे क्यों सोच रहा है कि कोई उससे कमतर है, और उस मसले को एड्रेस किया जाए.
6: राइट, जबरदस्त. अच्छा नीलम, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं वहाँ पर, यूके की मैं बात करूँ, लंदन की मैं बात करूँ, डिफरेंट कंट्रीज की, लाइक हम जोहान्सबर्ग की भी बात करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनमें रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. आप क्या समझती हैं कि ये जो रिस्पेक्ट है इसको मेनटेन रखने के लिए या इसको सिखाने के लिए, जिसमें रेसिज्म ना हो, जिसमें डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इन चीज़ों को मेनटेन रखने के लिए सबसे पहला इकदाम एज अ पर्सन हमें क्या करना चाहिए?
7: एक तो ये कि हमें अपने आप को अकेले कुल नहीं समझना चाहिए. मैं इसको अगर कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही आखिर है, किसी का कोई भी स्टैंस है वो गलत है या सही है, अगर वो स्टैंस वो आप पे इम्पोज नहीं कर रहे, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने अकायद के साथ जी रही हूँ और मैं अपने नेबर को जो है वो फोर्स नहीं कर रही, उसके ऊपर अपना जो अकायद है वो इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं ये उनकी जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ. इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही यही है कि जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे तर्ज जिंदगी है मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए. तो जब मैं हर किसी इंडिविजुअल को अपने आप से शुरू करना है, हो सकता है कुछ लोग आप उनको इज्जत दें तो उनको इज्जत रास भी ना आए, लेकिन वो आपका मसला नहीं है.
6: बिल्कुल,
7: आप कम से कम अपनी जात की हद तक जो है वो लोगों को इज्जत दें अगर आपने इन डाइवर्स कम्युनिटीज में जीना है. वरना तो पाकिस्तान में आप रहते आपके मतलब 90% लोग आपके इर्द गिर्द मुस्लिम थे. बट अगर आप सिर्फ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं और ये जो एथनिसिटी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप अपनी अकायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरों के अकायद का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें. तो आई होप के वो भी एक ना एकदम, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस्लाम का. आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, रमजान होता है, वो उनको समझ होती है कि वो आपका रोजा है, वो बड़ा केयर करते हैं कि चले आप वर्किंग आवर्स तो यहाँ पे कम नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिगार्ड जरूर किया जाता है. तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज में एक गुंजाइश और एक स्पेस पैदा हो रही है और मुस्लिम्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. और इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम का डर, इस्लाम से मुतालिक मिसकंसेप्शंस और जो कि फैलाए गए हैं मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए से, तो वो डर जब आप उनका खत्म कर देंगे कि हम तो आप जैसे ही लोग हैं और हमारा तो रिलीजन हमें इंसानियत का एहतराम और लोगों का कहता है कि मतलब आपकी जुबान से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो इतना खूबसूरत रिलीजन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे. तो ये जब आप मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तो डेफिनेटली अब इंग्लैंड में काफी स्पेस पैदा हो भी रही है इस्लाम के हवाले से.
6: तो ये जो हमारा स्लोगन है हमारा, जियो और जीने दो, मेरा ख्याल है इस पे जो है हमें अपनी जिंदगी को फोकस करना चाहिए, अपनी जिंदगियों को लेकर चलना चाहिए कि खुद भी जिए, खुद भी अच्छा इखलाक जो है आप रखें, अच्छी बात रखें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्तवार रखें. नीलम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी. टाइम हो जाता है वे बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया.
5: Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
8: We work hard to build our homes, businesses and futures. Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity, and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims, and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent, and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity, and liability diamond insurance covers. Call Rafiq Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 4553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
3: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
5: Across Sudan, starvation is tightening its grip.
9: With rising food prices and widespread malnutrition, 8.7 million people are now facing emergency or famine-level hunger. As the conflict intensifies and aid routes narrow, families in Sudan are running out of options and time. The Al Imdad Foundation is delivering life-saving humanitarian aid to those most at risk. Stand with Sudan. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
10: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184. Or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
11: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
6: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है ये जो फोबिया है इसको खत्म किया जा सकता है एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है अच्छा नीलम आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है अब थोड़ी आपकी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए जरा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया जर्नलिज्म में आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट है डिफरेंट है इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
7: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा कमर्शलाइज में कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है एक खबर को रिपोर्ट करना एक इशू को उठाना किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना ये जर्नलिज्म है लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा ये है कि वो इश्यूज को उठाते हैं लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास वी कांट ब्लेम देम उनके पास वो एजुकेशन नहीं है तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं वो और एक जर्नलिस्ट बन गया तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है जो नहीं है जर्नलिस्ट मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जांपल दूंगी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे उसको स्प्रेड करना उसके ऊपर बात करना पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी जो लोगों के इश्यूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी वो बहुत कम हो गई है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज जैसा वहां से आया है ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल कोई भी न्यूज वेबसाइट किसी भी इदारे या किसी भी हम मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में स्टेट मीडिया तो स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है सारे न्यूज को तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा यहां तक जहां तक बात है बरतानिया की बरतानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कमांड पर एनालाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है। इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे। जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता,
6: सही।
7: वो उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है। तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म उसका अहवाल है, बाकी बर्तानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही है बहुत अच्छी है, चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, BBC बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में। यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को उतना नहीं दिया जाता। तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बर्तानिया में,
6: सही। और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें फेयर जर्नलिज्म जरूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप जरूर करें, और उसका जो प्रेशर है डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को जरा तरीके से मेंटेन करें। अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज है समटाइम उनको बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है, तो जाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं, तो उस पे जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही आप अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को।
7: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी। अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा, लेकिन लोग जो है उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो जो उम्मीद बहार है
6: जी।
7: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एडी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे, तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो, उनको निकाल के सामने लाएं तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहां बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के ये भी अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है, तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाया अपने नाज़रीन में।
6: क्या बात है, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहां आप नेगेटिव न्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं वहां तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो भी आप जरूर निकालें, उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया, अब आपकी कोशिश की बारी है, आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां और कामयाबी करे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
12: इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू एरा, सलाम मीडिया, ह्यूमैनिटेरियन जर्नलिज्म।
13: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge. Your true home away from home. Albeit is the ideal heaven for families, business people, and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities. Your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Albeit has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albeitlodge.co.za.
14: Dad, these Frimax chips are so tasty.
15: Wow, that really takes me back. My dad bought me a Frimax chips every day after school. They were my favorite when I was your age as well. Quality is at the very heart of what we do, and that's why we ensure that every Frimax packet is filled with the beautiful goodness and flavor-packed taste that you've come to expect from us since 1982. Frimax, from generation to generation.
16: Gaza needs your support more than ever. Homes have been shattered, and families have lost everything. With your support, our teams are delivering clean water tankers, feeding the hungry, and assisting orphans who have no one left. Let us give Gaza whatever help we can. African Muslims Agency, empowering, educating, inspiring.
4: The world is bigger than borders, and now your banking can travel with you. The Vivier Foreign Currency Account from Al Baraka Bank lets you spend globally with confidence. Six major currencies, one secure Visa card. Shop online, swipe overseas, and travel with ease from Dubai to London, Makkah to Istanbul with 0 point of sale transaction fees and convenient app management. Vivier gives you convenience wherever life takes you. Activate your Vivier account today.
17: Right now, in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
11: Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho. Isi shikasta o basta zaba mein zahir ho. Main surkhuru nazar aaun kalam ho ke sakoot. Teri ata mere namo nishan mein zahir ho. Assalamu alaikum. This is Maryam Hashmi with program Mid Morning Talk. Ji haan, aaj ka ye khususi Urdu special transmission jo hai, wo Salam Media ke zariye aap tak pahunchaya ja raha hai. Aur jiska main maqsad yahi hai ki hum na sirf mukhtalif zubanon ko promote kar saken, usmein baat kar saken, balki hum logon ko jo is community se related hain, jo is zuban se wabasta hain, unko jo hai ek dusre ke kareeb la saken. Jaise hum baat kar rahe hain ki we are live from Johannesburg, and Johannesburg ek aisa diverse city hai South Africa ka jisme mashallah bahut sare cultural cultures jo hain wo rehte hain, aur different zubane hain, different languages hain, aur un languages ke sath kya hota hai ki hum communicate karte hain. To har zuban khoobsurat hai, har language jo hai wo behtareen hai. اور کوشش ہماری آج کے اس خصوصی اسپیشل اردو ٹرانسمیشن کی یہی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں, وابستگی رکھتے ہیں, دل سے جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں, اس کلچر سے جڑے ہیں, اور اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنا کوئی میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیے گا, 11 سے لے کر 1 بجے تک, یعنی کہ 11 to 1 PM میں آپ کے ساتھ رہوں گی مڈ مارننگ ٹاک میں. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, دنیا کو کوئی پیغام آپ اچھا دینا چاہتے ہیں, امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں. جی پروگرام کی ہم آج شروعات کرتے ہیں, اور اس کا فارمیٹ سمپلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آج اس پروگرام میں ڈفرنٹ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے اور ڈفرنٹ کنٹریز سے کنیکٹ کیا ہے. جی ہاں, موسٹلی ہماری جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کی वो हैं यूके से बिलोंग करती हैं जी, मोस्टली लंदन से बिलोंग करती हैं, एक हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमने सोचा कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, उनको सबको कनेक्ट किया जाए और आप तक उनकी आवाज़ जो है पहुँचाई जाए। शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक बहुत प्यारी गेस्ट हैं, और गेस्ट की तारीफ में आपको क्या बताती चलूँ, क्योंकि सम टाइम होता ही है कि आप बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, और आप में बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी उन सलाहियतों को आजमा कर, उसको काम में लाकर आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है सना उस्मान पाकिस्तान लाहौर से, और उन्होंने क्या किया कि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी पेंटर थी, बहुत कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में अचीव किया, बहुत अवार्ड्स जो हैं उन्हें मिले हैं, और जिसने उनकी मतलब कारकर्दगी को बहुत ज्यादा सराहा गया है, गवर्नमेंट लेवल पे उनको बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया गया है। तो उनकी आज कारकर्दगी की कहानी हम उनसे सुनेंगे, क्योंकि अपने उन्होंने इस पैशन को, आर्ट के पैशन को उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। ये बड़ा एक न्यू थिंग है मेरा ख्याल है हम सब के लिए, बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि आप अपने पैशन को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो आज की स्टोरी है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि हम देखें कि अगर आपका पैशन है, आपका आर्ट है, उसमें कोई पैशन और उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है एज अ कैफे। जी हाँ, उन्होंने एक कैफे बनाया गनी आर्ट्स के नाम से, और उस कैफे को उन्होंने जो है बहुत रंग दिया है, बड़ा खूबसूरत पेंट के रंगों की तरह का उन्होंने उसको रंग दिया है। और किस तरह की ये सोच उनके साथ आई, उन्होंने कैसे इस चीज को स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किल आई, ये सब हम उनसे डिस्कस करेंगे। जी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में सना उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम सना।
18: वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप?
6: जी सना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए पाकिस्तान के वेदर की क्या कंडीशन है वहाँ पे? जी वेदर जो है आपको पता है जोहान्सबर्ग का वेदर बहुत खूबसूरत है, आज तो बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह सनी डे है, तो पाकिस्तान में सिचुएशन कैसी जा रही है वेदर की?
18: पाकिस्तान में इस टाइम मॉनसून चल रहा है, अगर वेदर को देख के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पाकिस्तान में तो खैर मिला जुला मौसम चल रहा है, गर्मी भी है और खुशनवारियत भी है, खूबसूरती भी है, और गर्मी तो आपको पता है गर्मी तो अपना रंग दिखाती है।
6: एग्जैक्टली, और पता ये जो है यही बड़ी खूबसूरती है अल्लाह सुभान व तआला की नेमतों की, कि कितने खूबसूरत जो है उन्होंने जो है ये रंग और मौसम जो है वो बनाए हैं। बात हो रही है रंगों की, तो सना बताइएगा कि आपका जो पैशन था आर्ट में, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट आर्ट में कैसे हुआ, फिर उसने आर्ट को आपने एक आर्ट कैफे में कैसे कन्वर्ट किया, जरा बताइएगा हमें।
18: बेसिकली मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप पहले इंट्रो दे चुकी हैं कि मैं जो आर्टिस्ट होता है वो बाय बोर्न आर्टिस्ट होता है, वो किसी भी फील्ड में अपना करियर बना ले, लेकिन उसकी जो अंदर का एक तख्लीकी इंसान होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो इसी तरह मैं भी आर्टिस्ट ही थी, शुरू से आर्टिस्ट थी, बचपन से आर्टिस्ट थी, बहुत ज्यादा पेंटिंग बनाई, हैंडवर्क बहुत ज्यादा किए, और मास्टर्स मैंने फिर हिस्ट्री में किया, लेकिन बात फिर वही खत्म हो गई कि जो आपका अंदर का इंसान होता है बेसिकली वही आपका असर होता है, और मेरे अंदर से मैं आर्टिस्ट थी, तो फिर मैंने पेंटिंग उसी को देख के इसको पेंटिंग को शौक के साथ साथ प्रोफेशन भी की तरफ फिर मैं ले आई।
6: राइट, सो ये जो आपका प्रोफेशन है, जैसे मैं आपके पीछे देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव आपकी चीजें हैं जो आपने क्रिएट किया है, तो इस कैफे का आइडिया आपको कैसे आया और आपने क्या सोचा कि आपके इस आर्ट को किस तरह से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, कुछ और भी कर सकते थे आप?
18: बेसिकली मेरा जो गनिया आर्ट का जो एक आइडिया था, मैं अपना एक ऐसा आउटलेट बनाना चाह रही थी जहाँ पे मैं अपना आर्ट को डिस्प्ले कर सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं एक आर्ट कर रही हूँ, मैं एक हुनर मेरे अंदर है, मैं अपनी पेंटिंग्स बना रही हूँ, तो मुझे उसको प्राइवेटली कैसे शोकेस करना। तो फिर जब मैंने अपना एक आउटलेट बनाने का सोचा जहाँ पे अपना आर्ट तख्लीक सारी दिखा सकती हूँ वहाँ पे चीज़ों को, फिर जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, आर्ट तो खाने और पीने के बगैर तो काफी नहीं होता कि जहाँ पे हम बैठें, गप शप करें, चाय कॉफी पिएं और साथ अपने आर्ट को भी इंजॉय करें।
6: अच्छा सर, ये भी बड़ा कहा जाता है कि जो आर्ट का और कॉफी का बड़ा जो है वो बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, आप क्या समझती हैं? जैसे मैंने आपकी बात किया कि आपने आर्ट को अपने प्रमोट करने के लिए कैफे का ही इंतखाब किया, तो आप भी ऐसी कुछ किसी आदत है आपको, कॉफी एंड आर्ट जो है ये आपके साथ साथ है?
18: बिल्कुल ऐसे ही है, जो आर्टिस्ट है वो पीने चाय और कॉफी का तो बहुत शौकीन है, उसे ये होता है कि आपका आपको नए नए याद आते हैं, साथ आप एक कॉफी का सिप लेते हैं, साथ आप एक रंग लेते हैं, आप इन चीजों को मिला के एक नई क्रिएशन बनाते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से उभर के आती है। और कॉफी आप जब तक एक इन्वायरमेंट को इंजॉयमेंट नहीं बनाएंगे ना, जब तक, क्योंकि कॉफी और चाय जो है, टी जो है, और वो है आपकी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आप उसको एंजॉय करेंगे, मौसम एंजॉय करेंगे, आपके अंदर आपको रंग समझ आएंगे, आपको क्रिएशन समझ आएगी। तो इन दोनों के इंतजार को मिला के मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया एक्सपीरियंस किया जाए, ताकि लोग कॉफी भी एंजॉय करें और अपना आर्ट, मेरे आर्ट को या अपने आर्ट को जो वो बनाते हैं यहाँ बैठ के, उसको भी वो अप्रिशिएट भी करें और उसको क्रिएट भी करें।
6: सही। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल होता है आइडियाज को जो है उसको अमली जामे पहनाना, उसको हकीकत में लाना। तो आपने माशाल्लाह अपने इस आर्ट को हकीकत में लेकर आई, बड़े चैलेंजेस आए होंगे, प्रॉब्लम आई होगी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको लगी और जो आप समझती हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को इस तरह स्टार्ट करना चाहिए, अपने किसी भी पैशन को वो आगे लेकर चलना चाहिए, तो उन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें।
18: असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल चैलेंज है वो है प्लानिंग, आपकी, आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और इन्वेस्टमेंट। कि ये सारी चीजें अगर आपने अपने आइडिया को, अपने ख्वाब को पूरा करना है, तो इन सारी चीजों को साथ लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि आइडिया तो आपके पास है, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप अमली शक्ल देने के लिए, एक आपको प्रॉपर हिम्मत और हौसले की जरूरत है।
6: राइट, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सो विल कम बैक आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
11: रिजुविनेटिंग मीडिया डे बाय डे, दिस इज सलाम मीडिया।
19: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
20: You South African, of course. You're anxious about the future. We've got you covered. Build on your wealth portfolio with Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Visit us at 151 Stephen Dlamini Road, Musgrave, Durban. Or call us on 031-202-4700 for more information. Randri Jewelers Gold Coin Exchange. Your passport to gold investment.
21: Valleys Motor Spares. We supply motor spares and accessories for all makes and models of motor cars, LDVs, buckies, trucks, and earth-moving equipment. We deliver on time, every time. Please contact us via WhatsApp on 014-592-0925 or call 014-592-0925 or visit 28 Zenderling Street, Rustenburg. Remember the name, Valleys Motor Spares.
22: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil. Now we're cooking.
23: When disaster strikes, families lose everything in an instant. Homes destroyed, communities displaced. Hope fades into uncertainty. Our Global Emergency Fund ensures we respond without delay, delivering food, water, shelter, and healthcare to families in need. To support our Global Emergency Fund, visit islamicrelief.org.za.
11: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
6: Yeah. جی ویلکم بیک پروگرام مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا عثمان, اور ثنا عثمان ہمیں بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا جو بزنس ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے کس طرح سے بلڈ اپ کیا. اچھا ثنا, ایک اور کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, گھبراتے ہیں نیو چیز کو کرنے میں, اور اسپیشلی اپنے پیشن کو, کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, جب آپ اس پیشن, آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے, آپ کا کوئی پیشن ہے, آپ کی کوئی چیز ہے, آپ اس سے کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ چیلنجز ایسے آ جاتے ہیں لائف میں کہ جس سے وہ بالکل گیو اپ کر جاتے ہیں اپنے شوق سے بھی اور اپنے کام سے بھی. تو آپ کو کچھ ایسا کبھی زندگی میں فیل ہوا کہ نہیں, یہ میرا جو پیشن ہے اس نے مجھے زندگی میں کچھ خاص وہ دیا نہیں, اس سے مجھے وہ جو میں چاہتی تھی آؤٹ کم وہ ملا نہیں, وہ آیا نہیں, تو آپ نے کبھی ایسا گیو اپ سوچ آئی آپ کی؟
0: دیکھیے, بزنس تو ایک نا ہر دن کے لیے ایک نیا لیسن دیتا ہے آپ کو. آپ کو کبھی بھی چیزیں کبھی بھی آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوتی, مطلب کبھی آپ کے فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کے ایسے موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ڈیسیجن لینا وہ سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن آپ نے اپنے فیلئر کو اپنا فیلئر نہیں سمجھنا, اس کو ایک نیا سبق سمجھ کے چلنا ہے. میری لائف میں بھی اس طرح کے بڑے بڑی چیزیں آئی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن آتی ہیں آ رہی ہیں, لیکن یہی والی بات کہ آپ کے اندر کا حوصلہ ہمت اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے, اور کہ نہیں ہم نے اس چیلنج کو فیس کرنا ہے اور ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے بزنس کو, اپنے کام کو اور اپنے خواب کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, دس از اے پارٹ آف لائف.
6: صحیح. تو اچھا ثنا, آپ نے چیلنج کی بات کی ہے, اچھا میں چاہوں گی آپ اپنے تھوڑے سے آرٹ پیسز کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. ذرا آپ تھوڑا سا ذرا اپنے کیفے کی طرف ذرا رخ کیجئے, میں تھوڑے سے آپ کے آرٹ پیسز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ میں کیا جو ہے آپ بناتی ہیں, کس طرح سے آپ کی تھاٹس ہیں, آپ اپنے ٹیبلز جو بھی آپ کی جو ہے چیزیں, آپ ضرور ہمیں دکھائیے, ہمارے ویورس کو, ہمارے لوگوں کو, تاکہ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور اندازہ کر سکیں کہ اگر آپ اس طرح کی کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں اگر آپ کر سکیں.
0: سب سے پہلے تو آپ یہ ایک وال ہینگنگ دیکھ رہے ہیں جو بالکل میرے پیچھے لگی ہوئی ہے,
6: رائٹ,
0: دا وال ہینگنگ, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا صوفی ٹچ دیا ہوا ہے, تھوڑی کالیگرافی دی ہوئی ہے, تھوڑا سا اس میں ذرا روحانیت والا ٹچ دیا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی ہم اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں, یہ ٹیبل رائزر ہے, دیکھیں اس کو ہم ایز اے ٹیبل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, یہ سب ہینڈ پینٹڈ ہے, اس کے اوپر ساتھ لگا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ میرے پیچھے جتنا بھی آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں گے, یہاں پہ بہت سی ہاؤس ہولڈ چیزیں لگی ہوئی ہیں, جیسے جسٹ لائک دس از اے ٹیشو باکسز, ٹھیک ہے, یہ ٹیشو باکسز ہیں, یہ وڈن ٹریز ہیں, وال ہینگنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم آپ میں آپ کو یہ آئیڈیا دیتی ہوں کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے گھروں کو سجانے کا, ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر کو سجانا زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پرانی اور اپنی جہیز کی چیزوں سے, اپنی امیوں کی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ٹائم بائی ٹائم سم ٹائم کے بعد چیزیں اپنی رونق اپنی چمک کھو بیٹھتی ہیں. تو جو میرا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے خواتین جو ہے یا کوئی بھی, آپ اپنے آرٹ کو ویسٹ مت کریں, اپنے سامان کو ویسٹ مت کریں, ہم پرانے سے پرانے فرنیچر کو بھی آپ کو نیا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی چیز ضائع نہیں کرنی, آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیو پینٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیا رنگ, نئی زندگی اس کے اندر پھونک سکتے ہیں.
6: بہترین ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا, کیونکہ جب ہم اپنی پرانی چیزوں کی بات کرتے ہیں, اپنے امی کی کوئی پیاری چیز ہے جو ہمارے دل سے بڑی قریب ہے اور ہم اس سے جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے, ہم اس کو کہیں اور ویسٹ نہیں کرنا چاہتے یا اس کو کہیں اور رکھنا نہیں چاہتے, تو اس کا بڑا اچھا استعمال ہے جو آپ نے بتایا. اچھا سنا, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم رہ گیا ہے, آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے, آپ ذرا بتائیے گا فیوچر پلانس آپ کے کیفے کے بارے میں آپ کے کیا ہیں.
0: کیفے کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک جسٹ ایک کیفے نہ رہے, یہ ایک ریکگنائزڈ, میں اس کو کریٹو پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہوں جہاں پہ فوڈ کلچر بزنس اور کمیونٹی ایک ساتھ آئیں. مستقبل میں میرا یہی ہے کہ یہاں پہ کریٹو ایونٹس ہوتے ہیں, ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, اور خواتین نوجوان سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, اپنے آرٹ کو شو کیس کریں یہاں پہ. اور سب سے بڑا خواب میرا یہی ہے کہ اگر یہاں آرٹ کا لوگ نام سنیں تو ان کے پاس صرف ایک کیفے نہ آئیں, ان کے پاس اپرچونیٹی, کریٹیوٹی, کوالٹی, انسپریشن کا تصور ان کے ذہن میں آئے. اور شاید یہی پورے سفر کی سب سے بات ہوگی کہ ہم ایک بزنس بلڈ نہ کریں بلکہ ہم ایک لیگیسی بنائیں جو دوسروں کو بھی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے انسپریشن دے.
6: زبردست سنا, یہ بہت اچھا میسج تھا اور بہت اچھی آپ کے ساتھ ہماری گفتگو رہی ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے, جو ہمارے لوگ ہیں جو اپنا نیا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنے کام میں اسکلڈ ہوں. آپ کو جو ہے اس طرح کے اگر آپ آرٹ ورک میں انٹرسٹیڈ ہیں, اور جیسے سنا نے بات کی ان کے کیفے میں کہ بہت ساری ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, ان ورک شاپس پہ آپ ان کو ضرور جوائن کیجیے, کچھ نیا سیکھیے, تاکہ جو ہے رنگوں سے نہ صرف آپ خوش ہوں بلکہ رنگوں سے آپ کو کھیلنا بھی آنا چاہیے. آپ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور کریٹو بنا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو رنگوں سے بھری ہوئی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت ساری گرینری ہے, گرین کلر ہے, ریڈ کلر ہے, یلو کلر ہے, مطلب آپ جتنا رینبو کے کلر سے بھی آپ نکالیں چیزیں, تو بہت ساری ایسی زندگی ہے جو رنگوں سے بھر جاتی ہے. اور زندگی میں رنگینیاں بھی لوگوں کے اچھے اخلاق سے اور اچھی چیزوں سے, صدقہ جاریہ سے آتی ہے. تو آپ اپنے اس کام کو سنا جاری رکھیے گا, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور امید ہے کہ آپ مستقبل میں ضرور کامیاب ہوں گی, اور اسی طرح اپنا علم آپ سیکھیں اور سکھائیں, اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت وہ بنتی چلی جائیں. بہت شکریہ آپ کے اس ساتھ کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہمارے ساتھ سنا عثمان.
1: Listen to something fresh. Listen to Salaam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu. وحبب إليهم الإيمان ليذكروه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. One of the verses recited today in Surah Hujurat, it just gives you shivers in your body. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah reminds the Sahaba, the congregation of the Sahaba, the galaxy of Sahaba, that remember well, in your presence is the greatest human. Like try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهِ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهِ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع